0: हार्दवकी
1: जय सीताराम एवरीवन यू आर बीइंग सीटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई पास ओवर बैक मोस्ट रिस्पेक्टफुली टू वंडरफुल यंग एंड टैलेंटेड एमसीज थैंक यू वेरी मच माय डियर डिवोटीज जय सीताराम

0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
1: नहीं, भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening
0: to you. कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
1: जाए।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her.
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it.